पसारे, कब को हाथ पसारे, हाथ पाओ पसारत बिनव तिल लाग, तब लग मेरा मन राम समारे।

मेरा मन ऐसी भगत बने मेरा मन ऐसी भगत बने मेरा मन ऐसी भगत बने मेरा मन ऐसी भगत बने

निरहंदे ओंकार सतगुरु प्रसाद राग बिलावल महला चौथा पड़ताल कर तेरवा बोलो भैया राम नाम भगत पावनो हर संत भगत तारणो हर पर पूरे रहया जल थले राम नाम इत गाय हर दुख विसारण रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख विसारण हारा गुरु बेटिया है मुकद जाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम खरे आसा पाओ दूजा बिनस विनासा विजयासा हुए निरासे जो जन मिलिया हर पासे कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावली महला पंजवा चुप दे घर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नदरी आवे तिस मो क्यों मिले प्रभनासी तो कर कृपा मोह मार्ग पावो साध संगत कैं चल लावो क्यों तरिए बिखिया संसार सतगुरु बोत पावे पार हाव पौने पौन चुलारे माया दे हर के भगत सदा थिर से हर खसोक ते रह निरारा सिर उपर आप गुरु रखवारा माया वीड माया सरफ पाया वीड माया सरफ गा हुमे बचे दीपक देखा सगल सिंगार करे नहीं पावे जा होए कृपालता गुरु मिलावे ओ फिर उदासी मैं एक रतन दसवाए दसाए निर्मोलक हीरा मिले ना उपाय हर का मंत्र दिसमें लाले गुरु खोलिया पड़दा।

हरि जो प्रवृत्ति आवत जलन बुझे ज हर हर गुण गावत रहाओ सफल जन्म होत बड़ भागी सात संग राम लिख लागे मत पत तन सुख सहजनंदा एक निमकण विसरो परमानंदा हर दर्शन की मन प्यास कनेरी पंत नानक चरण प्रभु तेरी बिलावल महला पंचवा मोह निर्गुण सब गुण विहुना दया धार अपना कर लीना मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया कर कृपा प्रभु घर मैं आए आ रहाओ भगत वचन पै कट नहारे संसार सागर उतरे पारे पतत पान प्रबिरद पार ब्रह्म सो नैनो देखिया साध संग प्रगटे नारायण नानक दास सब दुख पलायन बिलावल महला पंजवा पावन जाने प्रभु तुमरी सेवा प्रभु विनासी अलख पेवा गुण बेअंत प्रभु गैर गंभीर ऊच महल स्वामी प्रभ मेरे तुआ परम्पर ठाकुर मेरे रहाओ एक सबिना ही को दूजा तुम ही जानो अपनी पूजा आपो कछु न होत भाए जिस रब देवै सो नाम पाए ओह नानक सो जन प्रभु पाए गुण निधान प्रभु तिन ही पाए बिलावल महला पंजवा मात गर्भ में हाथ दे रखिया हर छोड़ बिखिया फल चाखिया अज गोबिंद साहु छोड़ जाल जब जमया संगारे मूड़े तब तन बिन सजाए जबे हाल रहाओ तन मन धन अपना कर वथापिया करण हर एक नहीं हुना जापिया महामोह अंध कु परिया पार ब्रह्म माया पटक विचरिया बड़े भाग प्रभु कीर्तन गाए संत संग नानक प्रभु पाया बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत बंध पाए नानक हुआ पार ब्रह्म सहाय सुख सहज नंद कनेरे गुरपुरा पूरी जाकी बाणी अनगुणा जाके जाय नगणे रहाओ सगल सरंग जाम करे प्रभ आपे भय मनोरथ सो प्रभ जापे अर्थ धर्म का मोका दाता पूरी भई सिमर सिमर विदाता साध संग नानक रंग माणिया घर आया पूरे गुरे आणिया बिलावल महला पंजवा सर्व निधान पूर्ण गुरुदेव रहा हर हर नाम जपत नर जीवै मर खुआर साकत नर जीवै राम नाम हुआ रखवारा चक मारो साकत बेचारा निंदा कर कर पचै कनेरे मृतक फांस गलै सिर पेरै ओह नानक जपै जन नाम

भिक्षे सपरवारेया कारज सतगुरु आप सवारेया वड्डी अरजा हर गोबिंद के सुख मंगल कल्याण विचारिया रहाओ पंत्रिण त्रिपण हरिया होए सगले जी सधारिया मन इच्छे नानक फलवाए पूर्ण इच बुझारिया बिलावल महला पंजवा जिस उपर होत दयाल हर सिमरत काटे सोकाल रहाओ सत्संग भजिए गोपाल गुण गावत टूटे जमजाल आपे सतगुरु आपे प्रतपाल नानक जाचे सादरवाल गौर बिलावल महला पंजवा मन में सिंचो हर हर नाम अनदिन कीर्तन हर गुण काम ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाओ कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरणी ताका मन लाग बिलावल महला पंजवा रोग गया प्रव्या मंगवाए नीत भई सुख सहज करवाए आ रहाओ रज रज भोजन खाओ मेर पाए अमृत नाम दमाए ते आए नानक गुरपुरे शरण आए जिन

जो निंद करे हमारे करतार नानक दास तां की सरणाई जाको शब्द अखंड अपार बिलावल महला पंजवां ताप संताप सगले गए बिनसे ते रोग पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ सर्ब सुखा।

हाउ जय जयकार जगतर मह लुचे सब जिया सुप्रसन्न भये सत गुरु प्रभु कछ बिघन न तिया जाका अंग

है सत देख बीचार सिद्ध साधक ग्रहे जोगे तज गए कर बार रहा जैसा सुपना रैन का तैसा संसार दृष्ट मानस।

लपट रहो मन बासना, गुर मिल एह त्यागू रहाओ। करो बेनती अतकनी, एह जियो हो मागो, अर्थ आन सब वारिया, प्रे निमक सुहागा। पंच संग गुर ते छुटै, दोख अर रागो, हृदय प्रगास प्रगट पया, निसबासर जागो। सरन सुहागण आया जिस मस्तक पागो, कहो नानक तिन पाया, तन

दासी संगत प्रभु त्याग एह कर्म हमारे तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिरत कनारे लाग परे तेरे दान स्यों न चित खस मारे।

मन सोई गईए, कहिए काए प्यार तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगन हमारा।

आधारा जो तुम करहो सोई पला मन लेता मुक्ता सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता चरण पखारूं

पंजवा मिरत हसै सिर ऊपरै पसुआ नहीं बूझै बाद साध हंकार मैं मरना नहीं लूजै।

हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटाए सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा, पिगोल पर्वत पार परे खाल चतुर्भुज कीता, अंदुले त्रिपवन सूजे आ गुर पेट पुनीता।

निसबासुर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाउ। जगत उदारन साध प्रभ तिन लागो पाल, मोको ईजै दान प्रभ संतन पगराल। उकत सयान

पत प्रता पिता प्रतपाल गुण गावू तेरे साध संग नानक सुखसाल। बल्लावल महला पंजवा इता लोड़े सुकर तुझ बिन कछ नाहे प्रता।

सर्व कला समरथ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाउ। खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूरा, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूरा। जित जित लावो तित तित लगै स्यानप सब जाली, जात कत तुम पर पूर हो मेरे दीन दयाली। सब किशत

शतर पत तिन छोड़ू त्याग रहाउ संतन का दाना रुखा सो सर्व निदान गृह साकत सती प्रकार ते बिकू समान भगत जना का लुगरा उड़ नगन न होई साकत सिर प्यो साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई साकत स्यो मुख जोरे अंध विचो टूटे हर की सेवा जो करे उत्पूते छूटे साकत स्यो मुख जोरे अद बीचो टूटे हर जन की सेवा करे हर जन की सेवा जो करे इत उते छूटे सब किश तुम ही ते हो आप बनत बनाई दर्शन भेटत साधका नानक गुण गाई बुलावल महला पंजवा सर्वनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर सीस धार हर नाम ते आवो कर कृपा दयाल प्रभु ए निध सिद्ध पावो संत जना की रेन काले माथे लावो रहा नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बुलाव पाप मलोवा आप त्याग संत संग समावो सास सास नह विसरे अनकतहे न तावो सफल दर्शन गुरु भेटी है मान मोहे मटावो सत संतोख दया धर्म सीगार बनावो सफल सुहागन नानका अपने प्रभु पावो बुलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया जिस जन हुआ साध संग तिस भेटे हर राया ए प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनक बाता सब कर रहे गुरु कर ले आया रहा हरण परे की राखता नाही सहसाया काम पूम हर नाम बोए अवसर तुल पाया अंतर जामी आप प्राप सब करे कराय पत पुनीत कने करे ठाकुर बिरदाय मत भूलो मानक जन माया परमाय नानक तिस्पत राखसी जो प्रभ पहराया बुलावल महला पंजवा माटी ते जिन साजया कर दुर्लभ देह अनक शिदर मन मैं टके निर्मल दिष्टेह क्यों विसरे प्रभ मने ते जिस कै गुण ए है प्रभ तज रचे जे आन स्यों सो रलिये खे है रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे है छूड़ पर पंच प्रभ स्यों रच हो तज कूड़े ने है जिन अनक एक बहु रंग किया है हो सी ए है कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरु ते मत ले है ऊचे ते ऊचा वडा सब संग बरणे है दास दास को दासरा नानक कर ले है बिलावल महला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस सब ऊपर समरत प्रभ पूरन गुण तास जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पा है परमेश्वर का आसरा संतन मन माह रहा आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपारे दीन दयाल कृपा निदय सा सास सुमारे करणहार जो कर रहे आसाई बड़े आई गुर पूरे उपदेश आ सुख खसम रजाए चिंत आदेशा गणत ताज जन हुक्म पछाता।

गुर साधु कुमार भरपूर साधु शोभा का नाही अंत साधक शोभा सुनवंत साधक शोभा उती उची साधक शोभा मूते मूची साधक शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोका मन साचा मुख साचा सोई और न पेखे एक बिन कोई नान क्लशन ब्रह्म ज्ञानी होय पदी ब्रह्म ज्ञानी सदानंदर लेव जैसे जल में कमल अलीप ब्रह्म ज्ञानी सदानंदर दुख जैसे सूर सबका सूखा ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि समान जैसे राज रंकुला के तुलवान ब्रह्म ज्ञानी के तीज एक जो सदा को खोदे को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुना नानक पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे माला लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मनोहि प्रकाश जैसे तरु आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्व समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उठते ऊंचा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी श्री जन पे नानक जन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सकल करी नाथ ब्रह्म आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चींदा ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर मया ब्रह्म ज्ञानी तक शुराना प्या ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के दिस्त अमृत बसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पार पुकार माहा ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ने तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी के हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी संग सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सकल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अभुत्यागत ब्रह्म ज्ञानी के पन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कष्टानंद ब्रह्म ज्ञानी सुखने सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी संहिता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंता ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का परिप्रताप है

ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी साधु जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

0: निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तारे। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दरसा पात्र रूप न पेखे नेत्र साधु कैल संसंग हेता करन न सुने काहू की निंदा अपते जाने आप को मंदा गुर प्रसाद बिकिया पर हरे मन की वासना मन ते टरे इंद्री जत पंच तुक ते रात नान कूट मदे को ऐसा परस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न वैसन की माया ते हो भिन्न कर्म करत होवे नह कर्म इस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग राचे मन तन अंतर सिमरण गोपाल सब उपर होवत कृपाल आप जड़े अवरे नाम जपावे नानक हो वैष्णो परम कृपा।
1: सगला परम पार ब्रह्म साध संग पापा मलक होवे इस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पय बिशन परीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। ओ पंडित जो मान पर बुदय राम नाम आत्म सोदय राम नाम सार रस पीवै उस पंडित के उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै वेद प्राण सिमरत बूझै मूल सुख मैं जानै अस्तूल क्यों वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान क्यों वरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोए कर कृपा अंतर उर तारै पास प्रेत मुग्ध पात्र को तारै सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जोगत कितै ना पाईए धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास संतन पाई तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गए परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूझी परे सगल संग आत्म्यो दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं बियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जोगत नानक को पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रखे।

कोट कृपण कठोर कई कोट पैगा तम निकोर कई कोट पर दर्ब को हिर है कई कोट पर दुख ना कर है कई कोट माया श्रमाहे कई कोट परदेश प्रमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सहद जति जोगी कई कोट राजी रस भोगी कई कोट पंखी सर को पाए कई कोट पात्र बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बह संतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट शस्तियर सूर नखेतर कई कोट देवदान इंद्र शेर शतर सगल समगरी अपने सूत तारै नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै कई कोट राज तम सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर शास्त्र कई कोट किए रतन संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे कई कोट जाक नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकिर मृगाच सब ते नीर सब हूं ते दूर नानक आप लिपत रहया भरपूर कई कोट पाताल के वास्ती कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मर है कई कोट बहु जोनी फिर है कई कोट बैठते ही खाहे कई कोट खाले थक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाणा तय तय राखे नानक सब किश प्रभ कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म पार मम लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सतसंग पार मम तन लागा रंग जिन को होए आप तो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हो अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बहु भांत प्राप्त हुए प्रमाए संबात ताका अंत न जाने कोए आपे आप नान प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होते आत्म प्रगास

0: ही पुरब लिखे का लहना पाही। साव के तिसका उकरण है जोग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग। जाप जान सदा सदा दिन रैनी, सब ते ऊच निर्मले करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जाकै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रभचीत। भागत भागत सुनिए त्यो लोए, जाकै हृदय एको होए। सच करनी सच ताकी रहत, सत हृदय सत मुकहत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्त साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग,
1: त्रिगुण से प्रभिन्न से बिजाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी परम मन में राख, मानक तेतु प्रीत त्याग। तेते परे नाहे कुछ कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। पा ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शिंद। सा तेरे की चरणी पाओ, नानक के मन ए न राओ। मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सज जाके, सर्व थोक सुनिए घर ताके। राज में राज जोग में जोगी, तप में तपीसर गृहस्थ में भोगी। ध्याए ध्याए भगत है सुख पाया, अनाक तिस पुरख का कने अंत ना पाया। जाके लीला के मित नाहे, सगल देव हारे अब गाहे। पिता के जन्म के जाने पूत, सगल प्रोही अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जैन दे, जन ना दास नाम त्यावे से। त्यो गुण में जाको परमाई, जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊच नीच तिसके अस्थान, जैसा जन आवे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे एक रंग। नाना बेदकीनो बसतार, प्रभ अविनाशी एक अंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए। नाना बिदकर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कड़ तिसके तब सब कड़ तिसके, सब तिसके ठाओ। जप जप जीवे नानक हर नाम। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगास पताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन सरवन। कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गात पाए। रूप सत जाका, रूप सत अरूप सत जाका सत स्थान। पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी। सत पुरख स माहे सुमाणी, सात कर्म जाकी रचना सत। मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली। जिसे बुझाए जिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई। विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश। तत ते जन जाके हृदय प्रवेश, सत निरत बूझे जे कोए। नाम जापत ताकी गत होए, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤ ਗਤ ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭੈ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸੁਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ਉਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਣ ਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਣ ਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਗਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਰ ਸੁਨਤਾ ਬੂਝਣ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੇ ਜਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਬਿਛਾਨਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਏ ਸੁਮਾਨਾ ਬਸਤ ਲੈ ਮੈਂ ਬਸਤ ਗੜਾਈ ਤਾ ਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਬੂਝੇ ਬੂਝਣ ਹਰ ਬਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੁਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਭਰ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇਹ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪਤ ਰਾਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਲੈ ਦਿਸ ਘਟਾਇਆ ਨੀਕੀ ਕੀਲੀ ਮੈਂ ਘਰ ਰਾਖੇ ਪਾਸਮ ਕਰੇ ਲਾਸਕਰ ਕੋਟ ਰਾਖੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸਨ ਕਾਲ ਤਾਕ ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਮਾਨਸ ਯਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤ ਤਿਸਕੇ ਕਰਤ ਬ੍ਰਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰਿਆ ਰਾਖੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲੱਖ ਬਡਾਣੀ ਬਾਰ ਰੰਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕਛ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਟਾਇਆ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਰੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤਰਪਤਾਨੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਭਤ ਨਾਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦ ਕਾਮ ਬੋਲੋ ਜਸ ਜੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੋਵਾ ਹੋਵ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੇ ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣੋ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਹਜੂਰੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਜੇ ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਜਾਤਾ ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ तिसके दर्स सब पाप मटावे, अबल सियानप सगली शाड़, ते जान के तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नाक ते जान के पूजो साधु पैरा। सलोक सत पुरख जन जानया, सतगुर तिसका नाऊ, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुर सिखी करे पतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे। सतगुर सिख कै बंधन काटे, गुर का सिख बकार ते हाटे, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़भागी हे। सतगुर सिख का हालत पालत सुवारे, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारे, गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर काश ना जनावे, हर हर नाम हृदय सद त्यावे, मन बेचे सतगुर कै पास, तिस सेवक के राज कारज रास, मन बेचे सतगुर कै पास, ते सेवक के कारज रास, सेवा करत होए नह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बेस बिस्मै गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गात जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाऊ, अनक बार गुर को बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एके आप नहीं किछ भरम, सहस सियाण फलिया ना जाइए, नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइए, सफल दर्शन पेखत पनीत, परस चरंगत निर्मरीत, भेटत संग राम गुण ग्रवे, पा ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर वचन करन अगाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हो संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तह लै मलाए, जेवा एक औस्तत अनेक, सत पुरख पूरन भवेक, काहू बोलन ना पहुँचत प्राणी, अगमा गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताके कीमत किने ना पाई, अनक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय समरे, सद बलिहारी सदगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, इहो हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमृत सो होए, उस पुरखा नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुण तास, आठ पैर हर का नाम ले, सच बधे सेवक को दे, मोह माया के संग ना लेप, मन में राखे हर हर एक, अंधकार दीपक पर गासे, नानक परम दुख तैसे नासे, तब तमें ठाण बरताई, अंध पिया दुख नाठे पाई, जान मरण के मिटे अंधेसे, साधु के पूर्ण अपदेसे, पहुँचुका निरपोह बसे, सगल व्याध मनते कह नसे, जिसका साधन कृपा तारी, साध संग जप नाम मरारी, तित पाए चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला धार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बन दूजा नाही कोई, सर्म निरंतर एको सोए, ओत पोत रविया रूप रंग, पै पर गा साध के संग, अराच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना, नानक एहो धन सार। आशपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अबर अपाव सब मीत बसारो, चरण कमर रिद मैं उरतारो, कारण कारण सो प्रभ समरथ दिर कर गहो नाम हर वथ ए तन सांचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कुंट उतावे सो धन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाछे मीत सो सख साधु संग परीत जै सोभा को करे भली करनी सा सोभा भज हर की सरणी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे खर अवगद लाए सर्व निधान मैं हर नाम निधान जप नानक दरगाह परवान मन पर बोधर हर के नाए दैद धावत आवे ठाए ताको बिघन लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बैन से पूर्ण हुई आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसे अबनासी को नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवा गवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग करन गुरुदेव यों रतन जन्म का होए उधार हर हर नाम प्राण आधार अनक अपाव ना छूटन हारे सिमरत

मातु ले आने भगत बिनाम्बर डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमर राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अवर है नाम जपावो सोनत कहत रहत गद पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नान गुण गाव गुण गावत तेरी उतरस मैल बेनथ जाए होमै बिख फैल होए चंत बसे सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल छाड़ सियानप सगली मना साध संग पावे सच तना हर पूंजी सच करो बेहार इहां सुख दरगह जयकार सरम निरंतर एको देख कौ नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाऊ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन रहो पूरन प्रभ्याप अनक बसार एक ते पै एक आराध पराचत गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरन आए नानक की प्रभ बेनती अपने भगती लाए अष्टपदी जात गया जाचे प्रभ दान कर कृपा देवो हर नाम सा जना की मांगो धूर पार ब्राह्मिर सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन तृपताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सोपर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सरन आन सब त्याग अंतर परगास आंदन लिव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुखोए सेवक के मनसा पूरित पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक केनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन मरण दुख भरम गया इस पुन्नी सरदा सा पूरी राम रहा सतसंग हजूरी जिसका साथन लिया मलाए नानक भगती नाम समाए सो को बिसरे जे काल ना पाने सो को बिसरे जे किया जाने सो को बिसरे जन सब कछ दिया सो को बिसरे जे जीवन जिया सो को बिसरे जे अगन में राखे गुर प्रसाद को बिरला लाखे सो को बिसरे जे बेखते काढ़े जन्म जन्म का टूटा गांडे गुर पूरे तत हे बजाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एह काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपाओ भगत पाए तरिय संसार बिन भगती सन होसी चार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए बिसराम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एह सुवाओ नेत्रो पेख दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण धोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक वस्त दीजे कर मैया गुर प्रसाद नाम जप लिया ताकि उपमा कही न जाए नानक रेहा सर्व समाए प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत बछल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत परतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सो होए पनीत भगत पाए लावे मन हित।

नहीं जाणिया उन्होंने जी, नहीं जाणिया, क्योंकि उड़क वालों की गल हो रही है ना, पास्ट दे विच गल जा रही है सारी, उन्होंने नहीं मन्या। जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे ले मान्यो, मथे दे उत्ते, सो माथे मथे दे उत्ते। महाराज नूं जदा ना पुराने बजुर्ग मैं गल करदा हुंदा आनंद कार दी मीटिंग दे विच, आप जी ने भी देखिया होना वह चीज हुण अजकल मिलदी नहीं देखण, किसी पुरानी बीबी नूं किसी ने सूट गिफ्ट दिता ना तो उन्हें इदा करके मथे ना लाउणा। अज अज की हुंदा, अज किसी ने सूट गिफ्ट दिता ना तो फटाफट लिफाफा खोल के उहदा स्टफ चेक कर दे, पाउण वाला कि देण वाला। ये गल्लां हसण वालियां नहीं जी, बजुर्गां दे कुछ कोल कुछ सिखण वालियां सी। जे कि आपां अपने दादा दादियां नूं पुछिया हुंदा बीबे भी ये की ये मत्थे नाल लाउण वाली चीज थोड़ी सी, ये तां पाउण वाली चीज सी, उह कहिंदे नहीं पुत ये उन्हें सानू भेट किया, ये प्यार भेट आ, सतगुरु का शुक्र करते हैं सच्चे पातशाह जी, ये आप जी ने प्यार बख्शिश किया साढ़े सिर मथे दे उपर आ। इसे तरह ही जो दुख भुख आउंदी आ ते गुरु दे लाल जिहड़े सीगे अंदर बैठे वह छे दिनां दे लड़ाई दे विच गुझे हुए 40 डिग्री टैंपरेचर दे विच वह इस दुख भुख नूं मथे ना ला रहे आ। जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे लै ले मान्यो, वह मथे दे नाल ला के मान रहा। भयो कृपाल ठाकुर सेवको सवरे हालत पलाता। एक गल क्लीयर आ जी, भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी की किताब है सचखंड दर्शन, औखी आ पढ़नी, मैं झूठ नहीं बोलता, मैनू समझ नहीं सी पैंदी, वह गुरमुख प्यारे ऑनलाइन पढ़ा रहे करके हुण समझ पैण लगी भी की किताब आ। कल्ले ने मैं पढ़ के देखी सी, मेरे गलों बसों बाहर दी गल्ला, क्योंकि भाई साहब जिहड़ी लिख रहे आ वह उन्हां खंडां दीआं गल्लां कर रहे आ जिहड़े उन्होंने दसम द्वार दे विच बाद उह देखे आ, तो वह गल्लां औखियां आ हुण सानूं समझणियां, पर वह गुरमुख प्यारे समझा रहे सी। भयो कृपाल ठाकुर सेवक सवरे हालत पलाता, वह कहिंदे कि जिहड़े ना मत्थे दे उत्ते इक निशान पैंदा आ वह इस दुनिया के घाल कमाई के पै जाता। जपजी साहब के गल आ निशान पैण की ना जी, वह पंचां दे कोल एक निशान हुंदा आ, जो निशान लैके धर्मराज की कचहरी च जाते हैं ना तो वह निशान इन्ना क चमकण वाला हुंदा कि धर्मराज भी उठ के खड़ा हो जाता भी ये तो सिर्फ इतों लंघन आए आ, जाना इन्होंने सचखंड आ, मेरे को लेखा जोखा नहीं। इस तरह हुण गुरु साहब जी कह रहे सी सवरे हलत पलाता, आ संसार भी सुखी हुंदा आ उन्हां गुरमुख प्यारां दा, तां अगला भी सुखी हुंदा, इस करके उन्हां नूं दुख नहीं लगदा। धन सेवक सफल ओ आया, ओ धन सेवक आ ओ सफल आ उन्हां दा आया, जिन नानक खसम पछाता, जिन्हां ने नानक जी नूं एज ए खसम एज ए वाहिगुरु मन्या ते नानक जी दा हुक्म मन लिया ते उस हुक्म दे विच तुरे। ते ए जिहड़ा हुक्म सी ए संत सिपाही वाला, इहदे विच पहला संत बनना आ, बाद दे विच सिपाही आउंदा। जे किसी ने सिपाही पहला बन गया ते फिर उहनू ओ हथियार जिहड़ी उहदी कृपा ने ओ तलवार बन जाणी आ, ओ कृपा लई नहीं उठूगी, ओ जुलम लई उठूगी, ओ जुलम करन वाली बन जाणी आ। ते महाराज ने इहनू कृपा करन वाली बनाया, ते इस करके कहा पहला संत बन फिर सिपाही बन। जदों पंजा प्यारे को जाने तो पंज प्यारे पुछदे आ कि तेरा नितनेम की आ, तेरा अमृत वेला की आ, तुहाडी रहणी बहणी की आ, जे उन्हां दी तसली ना होवे कहिंदे हले तू जाओ, हले तुसीं नहीं, हले तुहानूं इह दात नहीं मिलणी। वह इसे करके हुंदी आ देखण दे लई कि इस बंदे दे कोल अपना क्रोध कंट्रोल करन लई पाठ है, नितनेम है, कि इहदी दुरवरतों तां नहीं करूगा। पर हौली हौली हुंदे हुंदे इह गल्लां आम बन गई कि नंबरां विच ज़्यादा पै गया तो उधरों घट गया का। तो उन्हां शहीद सिंघां नूं याद कर रहे सी जिन्हां ने 84 दे विच हाथ ना खड़े करके मौत कबूली, क्योंकि उन्हां नूं ये गल पक्की गल कर कर गई सी कि ये मौत शरीर दी आ, आत्मा दी नहीं, असी अपने वाहिगुरु जी नाल तोड़ नभाउणी आ।

ਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨਮੈ ਮਿਟਾਵੋ ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਸੁਮਰ ਏਕ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕ ਹੈ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰ ਸੁਧਾ ਖਿਰ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕ ਆਖਿਰ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਵੈ ਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ਕਾਂਖੀ ਏਕ ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾਮ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਅਨਗਨ ਜਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਭਾਵਨਾ ਵਿਆਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਵ ਨਿਦਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਰਿਤ ਸਿਤ ਨੌ ਨੇਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਨ ਤਤ ਬੋਧ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਸ਼ਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੁਭ ਭਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਿਮਰਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਜੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਈ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਬੇਮੋਤਾਜ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਸਰਵ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਤਨ ਕੀ ਮੰਗਾਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਤਨ ਸਤਬਲਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖ ਬਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਤਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਤਨ ਅੰਧਕ ਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਬਸੇ ਹਰ ਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਣਦਿਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਮਨ ਝੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿ ਸਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਚਲੇ ਅਸੰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਚੁਨਕਾਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸ਼ਰਣੀ ਪਇਆ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿਰ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚੋਂ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਤਾਰੀ ਸਭ ਤਰਨਾ ਸਿਮ ਸਿਮਰ ਹਰਿ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਖਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ਮਨੁਹਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜੈ ਮਾਂ ਭਿਆ ਦੂ ਜਮ ਤਲੈ ਕਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚਲੈ ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਤੁਭਾਰੀ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਕਿਨ ਮਾਇਓ ਉਧਾਰੀ ਅਨਪੁਨਾ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ਸਗਲ ਸੇਠ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ ਲਾਹ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਰੈ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨਾਮ ਬੁਝਾਵੈ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਗਾਵੈ ਜੇ ਮਾਰਗ ਇਹ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ ਤੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੰਗੋ ਸੋਹਿਲਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈਐ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ ਨਾਮ ਚਪਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਜਾਇਆ ਸਿੰਗਾਰੈ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਭੋ ਨਾ ਧੋਵੈ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਜੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸੰਗ ਤੋਸਾ ਜੇ ਪੈਂਡਾ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੋ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਨਾਲ ਪਛਾਨੋ ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਘਾਮ ਤੈ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਛਾਮ ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਜਿਆ ਕਰਖੈ ਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ ਭਗ ਜਨਾ ਕੀ ਵਰਤ ਨਾਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟ
हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकसा कुमात, हर जन कहे हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान, मन तन रंग रते रंग एक कह, नानक जन कह बिरत विवेकै, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर का नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत को परै न भंग, हर का नाम जन की वड़ियाई, हर का नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत काश न बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै मालिक जीना, हर धन जन को आप प्रभु दीना, हर हर जन कै ओट स्थानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर सराते, सुन समाध नाम रसमाते, आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे, पार जाते हर को नाम, कामतेन हर हर गुणगाम, सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसा, संत प्रताप दुरत सब नसा, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछेवर न होए, नानक गुरमुख नाम पवै जान को, श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, एके सर्व टंडोल पूछ नाही, हर हरे नानक नाम अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब त्यान, कठ सिमृत विज्ञान, जोग अभ्यास करम त्रम क्रिया, सगल त्याग भ्रम दे फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु भांति, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फ्राजर जीवै, महा उदास तपिस्तर थीवै, अग्न माय होम प्राण, कनक असु है भूमदान, न्योली कर्म करे बोयासन, जैन मार्ग सांजम आत साधन, निमख निम कर श्री कटावै, तोपी होमै मैल न जावै, हर के नाम समसर कश ना है, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए, मन कामना तीर्थ ते छुटै, गर्व गुमान न मन ते हुटै, सोच करे दिन सारात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहुत साधना करे, मन ते कभू न बिखिया टरै, जल तो वह बौदे अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पथ बहुमूच, बहुत श्याम जम का भो व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै, एक अनेक अगर नहीं बुझाए, कोट पाव दरगा नहीं सीजै, छूट स्नाही ऊपयाल, मोह व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाना, गोविंद भजन मिन तिल नहीं माना, हर का नाम जब दुख जाए, नानक बोले सह सभाए, चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय साध गावे, जे को अपनी शोभा लोरे, साह सिंगे होमा छोरे, जे को जन्म मरण ते डरे, साजना की शरण ही परे, जिस जन को प्राप दर्श प्यासा, नानक तक भल भल जासा, सकल पुरख में पुरख प्रधान, साह संग जा का मिटाव महान, आपस को जो जाना नीचा, सो गुनिया सब ते उच्चा, जाका मन होए सकल किरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखा सकल श्रेष्ठ साजना, सुख दुख जन साम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर्धन कहो धन तिरो नाओ, निथावे कहो नाओ त्राथाओ, निमाने को प्राप्त तिरो मान, सकल कटा को देवो दान, कर्ण क्रावण हर स्वामी, सकल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जानो, आपे अपन संग आप प्रभराते, तुमरी अस्तित तुमते होए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, सा संग दुर्मत माल हिरिया, सगल उद्यम मैं उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बाणी मैं अमृत बाणी, हर को जास सुन रसन बखानी, सगल थान त्यो उत्तम थान, नानक जे घट वसै हर नाम, श्लोक निर्गुण यारे अनया, सो प्रभु सदा संभाल, जिन किया तिस चीत रख, नानक निभी नाल, अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कम दृष्टानी, जिन तू सास वार शिंगारिया, कर अग्न में जिन वारिया, पर वस्ता तुझे प्यारा दूध, पर जोगन भोजन सुख सूद, बिरद पया ऊपर साख सैन, मुख प्याओ बैठ को दैन, ए निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श लो तौ नानक सीजै, जे प्रसाद धरि ऊपर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संग हसै,
ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਪ ਕਮੁੱਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸ ਪਾਪ ਕਰ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੁੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਲੇਹ ਪ੍ਰਵਿਆਪੇ ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੈ ਗਵਾਰ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵਨਿਤ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਾਨੀ ਲਾਵੈ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਸਰਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾ ਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ ਜਾ ਕੀ ਟੈਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਸਭ ਸਾਰੈ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏ ਭੂਲਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗਰਚੈ ਸਾ ਝੋਟ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਰ ਕਰਮਾਨਾ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸਦੂਰ ਪ੍ਰਾਨੈ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸਰਾਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ ਚੰਦਨ ਲੇ ਅਵਤਾਰਾ ਥੋਏ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤ ਵਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਾਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਹ ਕਸ਼ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋ ਸਵਾਨ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰਾਇਆ ਥਾ ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿ ਸਮਾਤ ਸੁਨੰਦਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਓ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ ਕਹਾਂ ਬਜਾਰਤ ਪੂਜਾ ਡੋਰਾ ਨਿਸਕਹੀਆ ਤੋ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ਕਹਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਪਤ ਗਾਵੈ ਗੋਂਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਭੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਭਰਪਤ ਪ੍ਰਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਉਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ਸੰਗ ਸਾਈ ਸੁਹਾਵਨ ਚੀਤ ਜੋ ਬਹਿਰਾਈ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲਗੁਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਸੈ ਅੰਧ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਬੈਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋ ਉਤਰੋ ਇਆ ਹੂੰ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੰਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਤੇਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ ਨਾਨਕ ਕਉ ਨ ਸਿਜਈ ਮਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਤ ਜਾਇ ਅਸ਼ਪਦੀ ਤਸਵਤ ਤੁਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵੈ ਇੱਕ ਵਸ ਕਰ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ ਏਕ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਸ ਪੀਰ ਲੈ ਤਉ ਮੁੜਾ ਕਉ ਕਾਂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਠੱਕ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ਚੱਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੂਖਤਾ ਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ ਜੇ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੁਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਅਗੰਤ ਸ਼ਾਪਨੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਉਲਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਕਸ਼ਪਾਰ ਸ਼ਾਹ ਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਬੋਰਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਕੀ ਬਸ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰੱਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨਾ ਮਾਥੈ ਉਸ ਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਅਨਕ ਭਾਤ ਮਾਇਆ ਕਹੇ ਸਰਪ੍ਰਹੋਤ ਚਾਨਾ ਨੇਤ ਬਿਰਕੀ ਛਾ ਸੋ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ ਜੋ ਦੀਸਾ ਸੋ ਚਾਲਨ ਹਾਰ ਲਪਟ ਰਿਹਾ ਤੈ ਅੰਧਾਰ ਪਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੀ ਤਾ ਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ ਕੇ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਤਨ ਤੁਮ ਸਵਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਉਬਨ ਤਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸ ਵਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾ ਪੇਖ ਹਸਤਾ ਮਿਥਿਆ ਤ੍ਰੋ ਮੋਪਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਆਪ ਸੁਪਰ ਕਰਤ ਕੁਮਾਨ ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਿਥਿਆ ਸ੍ਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੈ ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਧਰਵ ਕੋਹਿਰੈ ਮਿਥਿਆ ਨੇਤ੍ਰ ਪੇਖ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਰੁਪਾਤ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਦ ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵੈ ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੈ ਮਿਥਿਆ ਤਰਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਰੇਤ ਵਿਕਾਰਾ ਬਿਨ ਬੂਜੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ਸਫਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਰਥੀ ਸਾਕੀ ਆਰਜਾ ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਸੂਚਾ ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ ਮੁੱਖਾ ਵਤਾ ਕਾ ਦੁਰਗੰਧ ਬਿਨ ਸਿਮਨ ਦਿਨਾਨ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਜਾਏ ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਨ ਕਹੇ ਨਿਰਾਰਥ ਧਾਮ ਤਹਨ ਤਹਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇ ਕਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਤਕ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਹਿ ਤਿਵਰ ਕਾ ਸ਼ਬਰ ਕੁਮਾਵਤ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨ ਪਾਹੂ ਪੀਨ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਪੀਨ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰੈ ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਣੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਕੁੰਜਨ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਤਾ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਭ ਜਾਨੈ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਮਾਨੈ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤਨ ਵੀਰਾ ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬਜਾਵਤ ਨੇਰਾ
पाप श्याम सगल ते रहत सब कस जाने आत्म की रहत जिस पावत सले लड़ लाए थान तनंतर समाये सो सेवक जिस कृपा करी नियमख नियमख जाप नानक हरि सलोक काम क्रोध लोमो बिरसाय हमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिष्ठा कर को रख मरमाए जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमृत परम गत पावे जय प्रसाद बसाए सुख मंदिर तिसे त्याए सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है ते हवन जोग जय प्रसाद पाठ प्रण वरणावे तिसे त्याग कतवर लुभावे जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस का बीजै जय प्रसाद तु सब को माना मुक्ता को जस रस मखाना जय प्रसाद तुर रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दरगाह मान पावे नानक पास सेती कर जावे जय प्रसाद आरोग कंचन देही ते लिव लाव तुस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा उलारा है मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छेद्र ठाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभु ताके जय प्रसाद तुझको न पहुंचाए मन साह साह समरूप प्रभु उच्चे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भक्त करे जय प्रसाद आपूखन पैरी जाए मन ते सिमरत क्यों की जाए जय प्रसाद अस्वस्थ सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी जय प्रसाद बाक मिलक तना राग प्रोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन पंत पनाई ऊट पैर सतिसे त्याई तिसे त्याए जो एक लख इहां उहां नानक तेरी रख जय प्रसाद करे पुन बोधान मन हठ पैर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साह साह चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पात्र है गुरु प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुने करना जय प्रसाद पेखी बिस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हस्त कर चलें जय प्रसाद संपूर्ण फलें जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तुम प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर तुता को जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तुता सुराच जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जप जाप सोए आप जपाए जपा सोना आप गवाए सोहर गुणगाम प्रभु कृपा ते होय प्रगास प्रभु दया ते कमल बगास प्रभु सुप्रसन्न बसमन सोय प्रभु दया ते महतु तुम होय सर्वदान प्रभु तेरी माया आपो कछु न किन्हु लया जे जित लावो तित लगे हरनाथ नान इन कह कछु ना श्लोक अगम आग पार ब्रह्म सोय जो जो कह सुमुक्ता हो सुन मीता नानक बिनवंता सा जना की चर्च कथा अष्टपदी सात का संग उजल होत सात संग मन सलीक होत सात का संग मिटा अभिमान सात का संग प्रकट सुज्ञान सात का संग बुझा परम नेरा सात संग सबोतन वेरा सात का संग पाए नाम रतन सात का संग एक ऊपर जतन सात की मैं मंबरना कौन प्राणी नानक सात की शोभा प्रमाय समानी सात का संग गोचर मिला सात का संग सदा प्रफुला सात का संग अवम बस पंचा सात संग अमृत रस पुंचा सात संग होय सबकी रेन सात का संग मनोहर बहन सात के संग कतुता सात संग असित मन पावे सात के संग माते पिन सात संग नान प्रभु सुप्रसन्न सात संग दुष्ण समीत साधु के संग महापनीत सात संग किसे नहीं बैर सात के संग न बींगा पैर सात के संग नाही को मंदा सात संग जने परमानंदा सात के संग नाही हों ताप सात के संग तजय सवाप आपे जाना साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई सात के संग न कबूता हुआ सात के संग सदा सुख पावे साध संग बस गोचर है साधु का संग अजार सहाय साध संग बस स्थान ऊंचा है साधु का संग महल पहुंचा है साध का संग दृढ़ सब धर्म साध का संग केवल पार ब्रह्म साध का संग पाए नाम निदान नानक साधु का कुर्बान साध का संग सब कोल उदार है साध संग साजन मीत तम निस्तार है साधु का संग सो तन पावे जिस तन ते सब को रसावे साध संग धर्म रह करे सेवा साध का संग शोभा सुरदेवा साधु के संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गाम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं कछ काल दर्शन पेट थूत निहाल साध के संग क्रूक थर साध के संग नरक पर हर साध के संग इहां हुआ सोहिला साध संग बिशर थर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न मिर्था जावे पार ब्रह्म साध रिद बसा है नानक उदरा साध सुन रसा साध के संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुणगाम
साधक संघ न मन ते विसराय, साधक संघ सर पर निस्तर है, साध संघ सर पर निस्तर है, साधक संघ लग मीठा, साधु का संघ खड़का डीठा, साध संघ पाए आज्ञाकारी, साध संगति हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नांग साध पेटे संजोग, साध की मामा वेदना जाना, जेता सुने ते तब खियाना, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की रूपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा उचते ऊंची, साध की शोभा मुझते मुची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पे कैक्स बिन कोय, नान के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदन लेप, जैसे जल में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदन निर्दोक, जैसे सूर सर्व को सोक, ब्रह्म ज्ञान ज्ञान दृष्ट समान, जैसे राजलंक को लागत तुल्पवान, ब्रह्म ज्ञानी का तीर जेक, जो बसदा को खोदा कुछ चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का गुनाव, नानक जो पाव का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैण लागा जला, ब्रह्म ज्ञानी का मन हो प्रकाश, जैसे तरु प्रकाश, ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सत समान, ब्रह्म ज्ञानी का नाही अवमान, ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा, मन अपना सबते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नान जिंस प्रभ आप करे, सब ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब उपरमया, ब्रह्म ज्ञानी तकश बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा सामदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जोगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रास, ब्रह्म ज्ञानी का नई मनास, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी स्महा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी लेता हो तो बंदा, ब्रह्म ज्ञानी का हो सुपला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपा सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी का वसा प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सजाग, ब्रह्म ज्ञानी हम बोध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी का कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुसाई निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नाम रास, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता, ब्रह्म ज्ञानी का हो चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मांत, ब्रह्म ज्ञानी करा प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाईया है, ब्रह्म ज्ञानी को बलबल जाइया, ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मनमा है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाना भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथा न जायद आखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना, ब्रह्म ज्ञानी का अंतरम पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरहात, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी अपनंकार, ब्रह्म ज्ञानी की सभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, श्लोक और तारा जो यंत्र नाम, सर्व में पेखा भगवान, निम्क निम्क ठाकुर नमस्कार, नानको परस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत नंजन दर्श, परत्र रूप न पेखा नेत्र, साध की टहल संसंगेत, करना सुना काऊ की निंदा, सबते जाने आपसको मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हर, मन की भाषण मन ते टर, इंद्री जित पांच दोख तेरा, नान कोट मदे को ऐसा परस, भैसनो सो जिस उपर सुप्रसन्न, विश्व की माया तो ये पेन, कर्म करत हो वह नहीं कर्म, तिस भैसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बादशाह, केवल भगत कीर्तन संग्राचय, मंत्र यंत्र सिमरन गोपाल, सब ऊपर हो कृपाल, आप त्रिड़ अवरा नाम जो पावा है, नानको वैष्णो परम गत पावा, भगवती भगवंत भक्त का संग, भगवती भगवंत भक्त का रंग, सगल त्यागा दुष्ट का संग, मंते बिन सगला परम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म, सा संग पापा मल खोवे, तुस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करा नित्रीत, मंत्र नरपा बिछन प्रीत, हर के चरण हृदय वसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्मा सोध है, राम नाम सारस पीवे, पंडित उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय वसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, भेद प्राण स्मृत पूजा मूल, सुख में जाना स्थूल, चौ वर्णा को देव देश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्ण में जपो को नाम, जो जो जप है तस्की गात हो, सा संग पावे जन कोय, कर कृपा यंत्र उतार, पश प्रेत मुक्त पाथर को तार,
सर्व रोग का उक्त नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जो तना पाई है धर्म नान किस मिले जिस लिखा तोर करम जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्मराम तुचंद्री आया दास चंद्र भाई तन पाया सदा निक निकट हर जान सो दास का प्रवान अपने दास को अब कृपा कराए तिस दास को सब सो जी पराए सकल संग आत्मदास ऐसी युक्त नान राम दास प्रभु की आज्ञा आत्मता वह जीव मुक्त सुख है तैसा हर्क तैसा सुख सदानंद नहीं दोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत ऐसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अवमान तैसा रंग तैसा राजान जो व्रताई साई जोत नानक उपर कही है जीवन मुक्त पहाड़ ब्रह्म के सकले ठाव जिस जित का रखा तैसा तैसा तनाव आपे करण क्रामण जो प्रभ पावे सोई फन होग पसरे आप हो अनंत रंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिम नानक पहे निहार सलोक उस करण एक जाना अंत न पारावार नानक प्रचना प्रवृचि भव भेद अनक प्रकार अस्पदी कही कोट है पुजारी कही कोट आचार व्यवहारी कही कोट पै तीर्थवासी कही कोट बन प्रमेदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तीसरो होते कई कोट आत्म त्यंतर है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवत नाम त्यावे नानक करते का अंत न पावे कई कोट पय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट उपेक आत्मनिकोर कई कोट पर दर्प को हरे कई कोट पर दुख न करें कई कोट माया श्रमाए कई कोट प्रदेश प्रमाए जे चित लागो तित लगना नानक करते की जाना करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रसपोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर वृख न बजाए कई कोट पंप पानी बस संतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट शशि सूर निखेतर कई कोट देह दान इंद्र सर शक्तर सगल समग्री अपने सूतार है नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार है कई कोट राजताम सात कई कोट वेद प्राण सिमृत सात कई कोट के रत्न समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चिरजीव है कई कोट गिरी मेरे स्वर्ण थी वे कई कोट जख है किन्नर प्रसाद कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगाज सब ते नेरा सब ते दूर नानक आप लिप्त रहे अप्रभुर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक शुक्र निवासी कई कोट जन्म जीव अमरा कई कोट बजो नीफर कई कोट बैठती खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट किए तहनवंत कई कोट माया में चिंत तै जा भाणा तै तै राखे नानक सब किश प्रभ कहाते कई कोट पै वैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म पार ब्रह्म रहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिल्यो प्रभ विनाश कई कोट मांगा सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनका हो आप सुर प्रसन्न नानक तेजन सदा तहन थन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश प्रमंड कई कोट हो अवतार कई युक्ति नो विस्तार कई बार पसरो पसार सदा सदा एक एक ओंकार कई कोट की ने बोपांत प्रभते हो प्रमा स्मात तहकांत न जाना को आपे आप नान प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो आत्म प्रगास कई कोट तात के मेते सदा नहारा एक को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सदी जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यार श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाई कोई नानक तुस बिलहारण है जल थल मील सो अष्टपदी करण क्रावण करण जो जो तुस पावे सोई हो खिर मैं थावो तो अपन हारा अंत नहीं किस पर आवारा हुक्मे तार अतहर हावै हुक्मे उपजा हुक्म समावै हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देख अपनी वड्याई नानक समय रसमाई प्रभ पावै मन उकत पावै प्रभ पावै तो पाथर त्रावै प्रभ पावै बिन सास ते राखै प्रभ पावै तो हर गुण पाखै प्रभ पावै तो पाते उदारै आप करै अपन विचारै दोसरिया का आप स्वामी दोसरिया का आप स्वामी खेल विकसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुख ते क्या हो आवै जो पावै सो ही करावै इसका हाथ हो सब कुछ ले जो पावै सो ही करे अनजानत बिखै मैं रचा जे जानत अपना आप बचाए पर में पूला दह दिस्तावै निम कमाए चार कुंठ फिर आवै कर कृपा जिसे अपनी भक्त दे नानक तेज ना मिले खेन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गृह नाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जाको अपनी करा बख्शीश ताका लेखन गण जगदीश जो पिंड सब तिसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बणत आ बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई
इसका बल ना ही साथ करण क्रम सर को नाथ आज्ञाकारी पराजी हो जो पावे सोई फुनती हो कबू ऊंच नीच में बस कबू सो हर खंग कबू नंद चंद ब्यहार कबू ऊप आकाश पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक अब मिलावन हार कबू नृत कर वो पात कबू सोए रह दिन रात कबू महाक्रोध विकराल कबू सर्व की हो त्रवाल कबू हो वह बाढ़ राजा कबू पखारी नीच का साजा कबू आप कीर्त में आवा कबू पला पला कावे ज्यो प्रभ रखत भी रह गुरु प्रसाद नानक सच कहे कबू हो पंडित करे विख्यान कबू मोह तारी लावा ध्यान कबू तर तीर स्नान कबू से सात मुख ज्ञान कबू कीट हस्तंग हो जिया अनुन प्रमे प्रमिया नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे ज्यो प्रभावे त्य नचावे जो तुझ पावे सोई हो नानक दूजा वर न कोय कबू सा संग ते पावे उस स्थान ते बोर न आवे अंतर हो ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मन तन अमृत एक रंग सदा बस पार ब्रह्म का संग ज्यो जल में जला खटाना त्यो ज्योति संग जो समाना मिटके गमन पाए विश्राम नानक प्रभु का सतगुरबान सलोक सुखी बसा मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले पशुपति जिसका अंतराज मान सो नरक पाती हो स्वान जो जाना मैं जो ब्रमंत सो हो बेष्टा का जंत आप कहो करमंत कहावे जन्म मरा बोजोन प्रमावे धन भूम का जो करा गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे धनवंता हो कर गुरबावे तृण समान कश संग न जावे बहु लश्कर मान कुप्रयास पर पितरता का हो विनाश सबते आप जाना बलवंत खिन में हो जाए पासमंत किसन बदा आप अहंकारी धर्म राय तुस्करे खुआरी गुर प्रसाद जा का मिट अभमान सो जन नानक दरगा प्रवान कोट कर्म करा हों तारे श्रम पावे सगले बृथारे अनक बस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन करे आत्म इंद्र वाय हर दरगाह को कैसे गवाय आपको जो पला कहावे तिसे पलाही निकट आवे सर्व की रेंज जा का मन होए को नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाना मुझ ते काश हो तब इसको सुना ही कोई जब ये जाना मैं किस करता तब लोग घर जोन में फरता जब तारा को बैरी मीत तब लग निचल ना ही चीत जब लग मोह मगर संग माए तब लग धर्म दाय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटा गुरु प्रसाद नानक हों छूटा सहस खट्टे लाखो उठता वै तृप्त ना वै माया पाछा पावे अन को बिख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरा बिना संतोख नहीं को राजा है सुप्रमनोट पृथ्वी सब काज है नाम रंग सर्व सुख होए बुढ़भागी किसे प्राप्त होए करण क्रामण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण क्रामण करण हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभु सोए जो कुछ कीनो सपने रंग सब ते दूर सब का संग बूझा देखा करा विवेक अप एक अप अनेक मरा न बिन सह आवा न जाय नानक सदी रह समाय आप देशा समझ आप रच सबका साथ आप कीनो अपन विस्तार सब उसका करण हार उससे पेन कहो किशोर धन तनंत्र एक का सोए अपने चल ताप करण हार कौत तो कर रंग अपार मन में आप मन अपने नानक कीमत कर न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किन विज्ञानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किन विरला चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल त्रिवाणी कट कट सुनी श्रवण ख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत शरण जो जन पर सो जन उतरण हार संत की निंदा नानका पौर पौर अवतारी संत का दुख हार जा कटा संत का दुखन जमते नहीं छुटा संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुख नरक में पाए संत का दुख मत हो मिलीन संत का दुख शोभाते हीन संत के हते को रखना को संत का दुखन धान प्रठोय संत कृपाल कृपा जय करे नानक संत संग निंद पीत रहे संत के दुखन ते मुख पवे संतन का दुखन काग ज्यो लवे संतन का दुख सर्प ज्यो पाए संत का दुखन त्रिग ज्यो क्रमाए संतन का दुखन तृष्णा में जला संत का दुखन सब को चले संत का दुखन ते सब जाए संत का दुख नीच निचाए संत दुखी का ताओ को नाए नानक संत पवे ता ओए भीगत पाए संत का निंदक माताय संत का निंद खंटक न पाय संत का निंद मातारा संत का निंद परमेश्वर मारा संत का निंद राज तेहीन संत का निंद दुखियार दीन संत के निंद को सर्व रोग संत के निंद को सदा वियोग संत की निंदा दुख में दुख नानक संत पावे तो उसका भी होए मोक
संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसा का नहीं मित संत के दुखी को डान लागा संत के दुखी को सब त्यागा संत का दुखी महाकारी संत का दुखी सदाकारी संत का दुखी जन्म अमरा संत की दुख ना सुख ते टरा संत के दुखी को नाई ठाव नानक संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी अदबी ते टूटा संत का दुखी कित काज ना पहुंचा संत के दुखी को धन परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर ते थोथा जब सास बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ किसना अपन बीजा पे खाए संत के दुखी को अपना रखनहार नानक संत पावे ता ले वार संत का दुखी यों बिल लाए जो जल बिहून मछली तड़फराए संत का दुखी भूखा नहीं राजा है ज्यो पाव इंद नहीं त्रापै संत का दुखी छुटा अकेला ज्यो बुहाड़ तिल खेत माए दोला संत का रोखी धर्म तेरा है संत का दुखी सदमिथ्या कैद किरत निंद का तुरही पया नानक ज्योतिष पावै सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगाह मिला सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी नाम रहना जीवाई है संत के दुखी की पूजन आशा संत का दुखी उठतला निराशा संत का दुख न तृष्ठा कोई जैसा भाव है तैसा कोई होए भया कीर्तन मिटा कोई नानक जाना सच्चा सोए सब कट तिसके वो करना हा सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस करो दिन रहा तिसे त्याहो सास क्रास सब कुछ वर्ता तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करना हार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करा तिसे आप नाम दे भट भागी नानक जन से सलोका तजो स्यान सुरजनो सिमरो हर हराय एक आसव मन रखो नानक दुख परम भोजा अष्टपदी मन की टेक प्रति सब जान देवन को एक है भगवान जिसका दिया रह गाय भोर न तृष्ण लग गया महारा राखा एक को आप मन का पिछना ही हाथ तिसका हुकुम बू सुख होए तिसका नाम रख कंठ प्रोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोय नानक विघ्न लागा कोय उस मन में कर्णकार कर्म मेरे सत व्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कले जियो नैनो पेक ठाकुर करंग सत्संग बिन सब संग चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपिया हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगाह नानक पूजल मथा बड़पा गीते जन जगमाय सदा सदा हर के गुण गाय राम नाम जो करें विचार से धनवंत करी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पहचान इत पुत कियो सो जी जान नाम संग जिसका मन माने नानक तिने निरंजन जाने गुर प्रसाद अपना आप सुजा जिसकी जानो तृष्णा बुझाए साध संग हर हर जिसका सर्व रूप ते हर जन रहत अंधन कीर्तन केवल ख्यान भ्रष्ट में सोई निर्वाण एक ऊपर जिसन की आशा किसी कटिया जाम की फासा पार्वम की जिसमन भूख नानक तिसन लागा दुख जिसका हर प्रभु मन चित आवा सो संग सोला नहीं डुलावा जिस प्रभु अपना कृपा करा सो सेवक को किस ते डराए जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कर्ज में आप समाया सोदत सोत सोत सी जिया गुरु प्रसाद ता सब उजिया जब देखो तब सब शमूर नानक सो सुखम सो स्थूल न किस जन्म न किस मरा आपन चलते आप ही कराए आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनक युक्त राज थाप थाप अपना शीना ही किस कांड तरन तारे ब्रह्मांड लाखो पे पुरख प्रताप आप जपाए धन अनक जाप जिन प्रभु जाता सो बावंत सगल संसार उदर तनमंत प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु का शब्द जो पहे निहाल उनकी सेवा सो इलाका है जिसनु कृपा करे बड़ पागा है नाम जब पावे विश्राम नाम तिन पुरख उत्तम करमान जो कुछ करा सो प्रभु का रंग सदा सदा बसार संग सह सभाई होवा सो करना हर पिछाणा सोए प्रभु का किया जन्मी ठलगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस देव जित समाय समाय वो सुख निदान उन्हों बाए ओ सुख निदान उन्हों बने आए आपको आप दीनो मान नानक प्रभ जान एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार तक सिमरन उदरिया नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गांड नहार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माए तिसते बिरथा कोई नाए रे मन मेरे सदा हर जाप अपना शिव प्रभ आपे आप अपन किया कछु न हो जे सब प्राणी लोचा कोय तिसमें ना ही तेरा किस काम कत नानक जब एक हर नाम रूप भंत होय ना ही मोह है प्रभु की जो सगल घट सो है धनवंता हो क्या को गर्व है जब सब कुछ तिसका दिया दर्व है आत सूरज को कहावे प्रभु की कला बिना कहतावे जे को होय बहादतार तिस देन हार जाना गवार
जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सोजन सदा रोग। ज्यो मंदिर को थम थमन, त्यो गुर का शब्द मन है स्तमन। ज्यो पखान नाव चढ़ प्राणी गुर चरण लगन स्तर। ज्यो अंधकार दीप प्रभगास, गुर दर्शन देख मन होय विगास। ज्यो माओ ध्यान में मार्ग पावै, त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावै। ते संतन की पाछो तूर, नानकी हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिरलाइया, प्रभु लिखे का लिखिया पाइया। दुख सुख प्रभु देव नहार, अवर त्याग तू तुझे चितार। जो कछ करा सोई सुखमान, पूला काहे फिरया जान। कौन बसता है तेरा संग, लाट रसरो बी पतंग। राम नाम जब फिर दे मां, नानक पास सेती कर जाए।

एको पसरिया दूजा कहे दृष्टा राष्ट्रपदी। आप कथा आप सुन हार आप एक आ विस्तार जहाँ तिस पावे तो श्रेष्ठ उपाय अपने पहना लय समाये तुम ते भिन्न नहीं किछो अपन सूत सब जगत प्रोए जाको प्रभु जी आ बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता जी जंत सबता का हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखा तिस कोई न मारा सो मुआ जिस मनो विसारा तिस ताज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुक्त जाकर संभात अंतर बाहर जानो साथ गुण दान बेअंत उपहार नानक दास सदा बलहार पूर्ण पूरे दयाल सब ऊपर हो कृपाल अपने कर्तव्य जाना आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाला जीवन बपात जो जो रचियो सोते सहते आत इस पावे तिसले मिलाए भगत करें हर के गुण गाए माने अंतर विश्वास कर मानिया करन हर नानक एक जानिया तन लागा हर एक कहनाए तिसकी आस न बिरती जाए सेवक कौ सेवा बने आए हुकुम बूझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं विचार जाकर मन बसया अहंकार बंधन तोर पाए निर्वैर अंदर पूजा गुर के पैर ए लोक सुखी परलोक सोहेले नानक हर प्रव्यापे मेले साध संग मिल करो नंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का है सुहाओ आठ पैर पेखो नेरा मिटा ज्ञान बिन सहरा सुने उपदेश हृदय वसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ हल्त पल दो लो सुहार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसा ते साच परीखिया मन तन नाम जपो लिवलाय दुख दर्द मन ते पहो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह ने बह खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन महाय नानक बोर न आवा जाए तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरे रखन हार त्याए निरभौ जपै सगल भौ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभु राखै तिसनाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाय मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुँचन हार सिर उपर ठंडा गुर सूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेख उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हारूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसा सोत निहाल ताकै निकट न आवत काल अमर पय अमरा पद पाया साध संग नानक हार त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रवास अष्टपदी संत संग अंत प्रभिठा ना प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक कटमाय अनकरंग नाना दृष्टाय नौन दम प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाध अनंत नाथ कह न जाय तर्ज विस्माद तिन देखा जिस आव दिखाए नानक जन सो जी पाए सो अंतर सुबार अनंत कटकट व्यापरिया भगवंत तरण माया आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम पौन पानी बै संतर महा चार कुंट दिशे समाये तिस्ते पिन नहीं कोठा गुरप्रसाद नानक सुख पाऊं भेद प्राण स्मृत मैं देख ससिर सूर क्षेत्र मैं एक पाणी प्रभु की सबको बोला आप ढोल न कबू डोला सर्व कला कर खेला खेल मूल न पाइया गुण अमोल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत धारो स्वामी ओतपोत गुर प्रसाद भरम का नास नानक मैं विशास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी ए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सो सुख माना है करन करावन हार प्रभु जाना है अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सम ओही आप सत किया सब सत तिस प्राप्त सगली उत्पात तिस पावे तां कर विस्तार तिस पावे तां एक ओंकार अनकल लखी न जाय तिस पावे तिसले मिलाए कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप आप भरपूर अंतर गज साहब जनाय नानक जन आ बजाए सर्व भूत आवर तारा सर्व नैन आपे खणारा सगल समग्री जा कातना आपन जास आप ही सुना आपन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सबका माधो लिप्त रहा जो कुछ कहना सो आपे कायम आगे आवे आगे जाए नानक जा पावे तलय समाये ऐसे हो सुना ही बुरा बुरा कहो किन काश कर आप भलाक तू तत्नी की आपे जाने अपने जी की आप सारे आप साज धारी सब साज ओत पोत अपन संग्राच
ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसरो सूझी पाए, तिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसा नान के जान, जो जाना ते सदा सुख हो, आ मिलाय ले प्रभ सोय, ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिसरदा भगवंत, धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया, जन अवन का सुहाओ, जन का संग चेता वैना, आ मुक मुक रस।

मेरा पिता तू है, मेरा माता तू, मेरा बंधप तू, मेरा भ्राता तू, मेरा राखा सबनी थाई तां पो केहा काड़ा जियो। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटाका अंतर जामी, सोए अचिंता जाग है चिंता, जहां कहां प्रभ तू बरसंता, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, को नानक गुर मंत्र दड़ाया, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दड़ाया। हमरी गणतन गणिया काई अपना बिरद पहचान, हाथ दे राखे करे अपने सदा सदा रंग मान, साचा साहेब सद मेहरबान, बंद पा मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण राव, जियो पाए पिंड जन साजिया, दिता पैनन खान, अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुरबान, अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुरबान।

0: ओंकार श्री भगत जी की फतेह। श्री भगवते जी सहाय। वाह श्री भगवते जी के बादशाह दसवीं प्रथम भगवती समय गए को नानक लेन त्याय। विलंगत को ते अमरदास रंडा से होय सहाय। अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर आय। श्री हर कृष्ण दिया ये जस ते सब दुख जाय। देख बहुत सिमरिया कनोन त्यावताय सप्ताय होय सहाय। जिसमें बादशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सप्ताह होय सहाय। जिसमें बादशाह श्री गुरु को जिसमें बादशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से पाठ दर्शन दी तात जान दर के बोलो जी
1: वाहे गुरु।
0: तन मानिया तो मानने दानिया तो दान दियो तो दियो पिता पिता वाहे जी आप से सूरजी साहब जी पाती है दास है गलतियां बोला माफ करना उनके वास्ते सुरते स्पष्ट पानी ते परंदे बल बख्श ने सही प्यारे मेरे जिना मिलिया आप तेरे नाम जितावे
1: नानक नाम चढ़दी कला तेरी।

रांगन रांगों सीवन सीवों राम नाम बिन करी न जीवो। भगत करों हर के गुण गावों आठ पहर अपना खसम ते आवों।

उठ भगती लगा, उठ भगती लगा यार वे प्रिय हबे सखियां मुंह कहीं ना जीहियां यार वे एक डूम एक चार।